0: जवानी क्या होती
1: डिस्को डांसर. गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी बर्थडे टू डेव ऑफ क्लॉनब्रुक फ्रॉम योर वाइफ समांथा योर सन्स आरजे एंड वीजे डॉटर समायरा नॉट फॉरगेटिंग सबीत एंड योर फैमिली अप इन एनमोर विशिंग यू अ वंडरफुल डे टुडे गॉड्स ब्लेसिंग सी यू डेव ऑफ क्लॉनब्रुक हैप्पी बर्थडे डेव. गुड आफ्टरनून ललिता. Doing a little dancing this afternoon. Nicola Schultz.

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: कबूल है।
1: मुझे भी।
2: ओ
1: हाँ, मैं देखता हूँ। दादी माँ, आप मेरे साथ आइए।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉरगेट इट।

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति, मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।